0: जिंदगी के राज, हवा की लहरों से बन के आवाज, ये है प्रोग्राम चराग। पेश किया जा रहा है हर जुमा शाम 7 से 8।
1: From the studios of Inspire FM, the time is now 6:30.

अगर आप अपने इस कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही इंस्पायर एफएम की टीम से रابطہ कीजिए। फोन करने के लिए 01582481810 या फिर ईमेल कीजिए info@inspirefm.org। इंस्पायर एफएम, आपका अपना रेडियो स्टेशन।

0: मूव फॉर टेन आ गया है दिस गर्ल कैन का नया चैलेंज, जिसमें हर कोई शामिल हो सकता है। बस 10 मिनट मूव करें महीने में 10 दफा। मुझे तो अब ज्यादा ही एनर्जी फील हो रही है और कॉन्फिडेंस भी।
1: अब मेरी नींद भी पहले से बेहतर है। सुबह की हल्की सी स्ट्रेचिंग हो या पार्क में तेज वॉक, कोई प्रेशर नहीं, कोई स्ट्रिक्ट स्केड्यूल नहीं। जब आपके लिए ठीक हो बस मूव करें। मैं पहले ही 3 सेशंस कर चुकी हूँ और बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। पूरे मुल्क की खवातीन इस महीने 10 मिनट 10 दफा मूव कर रही हैं। आप भी ज्वाइन करें, सर्च करें दिस गर्ल कैन मूव फॉर 10।

0: يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان.
1: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express. Brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites. Then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
2: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है। कोट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम और तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे। कोट यूके ऑफिस 03001233774
3: If you fall asleep at the wheel, you'll put your life in danger and the lives of others as well. Before you feel tired, pull off the road into a services or other safe area. Drink some strong coffee and take a quick nap while the caffeine kicks in.
4: If you're having a nap, you've left your lights on, sir.
5: Aye, cheers.
3: Think. Don't drive tired.
6: From the studios of Inspire FM, the time is now 12:30.

0: इश्क तड़का में इस वसीयत के पूरा करने के बाद जो उन्होंने की, उनके छोड़े हुए कर्ज के अदा करने के बाद औरतों का हिस्सा चौथा है तुम्हारे तरके में, अगर तुम्हारी औलाद नहीं है। अगर तुम्हारी औलाद है तो उनको तुम्हारे तरका में से आठवां हिस्सा मिलेगा, जो वसीयत तुमने की है उसकी तामील और कर्ज के अदा करने के बाद। ये इस्लाम के अंदर औरत को बाकायदा तौर पर हिस्सेदार ठहराया गया, उस मालो दौलत में, उस असासे में जहाँ पर के फौत हो जाता है और बाद में औरतें और मर्द वारस हों। इस्लाम का ये कानून विरासत जिन बुनियादों पर कायम है उनकी थोड़ी सी वजाहत जरूरी है, इससे इसकी हिकमत के बाद गोशे सामने आएंगे। विरासत की सारी तकसीम खानदान के अफराद के मबैन होती है, उसमें नस्बी रिश्तों और निकाह को बुनियाद बनाया गया। खानदान एक मुस्तकिल इकाई है जिसके अफराद को नस्बी रिश्ता और खूनी ताल्लुक बाम जोड़ के रखता है। उनके दरमियान मोहब्बत, हमदर्दी और तावन का फितरी जज्बा मौजूद होता है। वो अमलन एक दूसरे के नफा और नुकसान में शरीक होते हैं, उनकी तरक्की में मदद देते हैं और मुश्किलात में काम आते हैं। इसी वजह से खानदान से इंसान की वाबस्तगी बड़ी गहरी होती है। वो उसकी फलाह बहबूद को दूसरे बहुत से फायदों पर मुकदम रखता है। उसकी मुआशी तंगी वो जिस हालत में भी हो तगोदो से दूर की जाती, और फितरी तौर पर खानदान को अपनी दौलत के अंदर शरीक करना और जायज हकदार को उसका हक देना, ये इस्लामी तालीमात है। मियाँ बीवी के दरमियान बिलअमूम खूनी रिश्ता तो नहीं होता, लेकिन उनका ताल्लुक इतना करीबी होता है और वो एक दूसरे के कामों में इस तरह शरीक होते हैं कि वो खानदानी के अफराद शुमार होते हैं। यानी नस्बी रिश्ता ना भी हो, कहीं बाहर से भी शादी हुई हो, अब शादी के बाद उनका फिर भी ये जो ताल्लुक है ये भी विरासत के हकदार बनने का सबब बनता है। और विरासत में जो मियाँ बीवी बाम उनमें से एक दुनिया से चला जाता है तो दूसरे के माल में से उनका वारिस बनना इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और फिर उसके बाद खानदान के दूसरे अफराद के मुकाबले में जो औरत का हक विरासत है, इस हवाले से हम अगर बात करें तो ये तरजीह बिल्कुल वाजे है कि इंसान नफ्सियाती तौर पर भी उनको सबसे ज्यादा करीब तसव्वुर करता है और अमलन भी वही उसके करीब होते हैं जो खानदान के अफराद होते हैं। जिनकी बार बर रास्त और बिला वास्ता उन्हीं से ताल्लुक होता है, जो दौलत और सरमाया वो मेहनत और मशक्कत से हासिल करता है उस पर खर्च करके वो एक तरह की रूहानी मसरत और सुकून महसूस करता है। वो चाहता है
1: Coming up next, English Talk Series. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati shahidin. That whoever holds tight my sunnah when there is corruption in my ummah, for him will be the reward of 100 martyrs.
3: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has two branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
4: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free, no-obligation market appraisal.
3: We can also offer guaranteed rental income.
4: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
5: Biscard Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscard Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a

सूरज की किरणों से चमके सारा जहां, इंस्पायर एफएम की लहरों से महके सारा समा, रहे आपके साथ यहां और वहां, शेयर रेडियो इंस्पायर एफएम।

0: मूव फॉर 10 आ गया है, दिस गर्ल कैन का नया चैलेंज, जिसमें हर कोई शामिल हो सकता है। बस 10 मिनट मूव करें महीने में 10 दफा। मुझे तो अब ज्यादा ही एनर्जी फील हो रही है और कॉन्फिडेंस भी।
1: अब मेरी नींद भी पहले से बेहतर है। सुबह की हल्की सी स्ट्रेचिंग हो या पार्क में तेज वॉक, कोई प्रेशर नहीं, कोई स्ट्रिक्ट स्केड्यूल नहीं। जब आपके लिए ठीक हो बस मूव करें। मैं पहले ही 3 सेशंस कर चुकी हूँ और बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। पूरे मुल्क की खवातीन इस महीने 10 मिनट 10 दफा मूव कर रही हैं। आप भी ज्वाइन करें, सर्च करें दिस गर्ल कैन मूव फॉर 10।

0: वालेकुम, मेरा नाम किरण है। कोर्ट कश्मीर ऑर्फेंस रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम और तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे। कोर्ट यूके ऑफिस 03001233774 court.org.uk।
1: Oh, Hillary, I was going to use newspaper display advertising.
2: But
1: it costs £10 per inch.
2: And that's too expensive?
1: Oh, indeed it is. I want to sell a 10-foot ladder.
2: Oh, Roger, invest in an ear-catching advertising campaign on this radio station instead. It's a great way to tell people about your products and service.
3: For details, click on inspirefm.org, then advertise. From the studios of Inspire FM, the time is now 1 o'clock.
4: Assalamu alaikum. You're listening to Inspire FM. We're now going to play for you the Arabic recitation of the Quran by the world-famous Qari Mishari Rashid Ali Fasi from Kuwait.
5: A'udhu billahi minash shaytan.